0: बाकियों के सेपरेटेड मिर्माशुद नमक जिसका दाना दाना एक समान, ये हुई ना बात।
1: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम एवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके साथ।